0: लोगी भी कितने खर्चे।
1: गवर्नमेंट आपको दे ही लिविंग एक्सपेंसेस के लिए दी है, गवर्नमेंट आपको, आप कहीं भी उस पैसे को यूज कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसके ऊपर। बड़ी अलग बात है, मतलब जिनको पता है वो मतलब स्किल डेवलप करे जा रहे हैं, फंडिंग ले जा रहे हैं, और जो रह गए हैं बिल्कुल रहने वाले हैं, पीछे रह जाएंगे, नुकसान होगा 30 से 100,000 डॉलर का। जब गैस स्टेशन पे हम 10 सेंट या 7 सेंट बचाने के लिए खड़े रहते हैं, जैसे आप देखिए लाइन लगी पड़ी थी गैस स्टेशन,
0: $1,000 का मामला,
1: लोगों को सेविंग का इतना ख्याल है, लेकिन जहाँ पैसे मिल रहे हैं, जब अभी गवर्नमेंट यूक्रेन को पैसा देती है इतना, तब तो आप हैरानी नहीं होती, आपको नहीं होती बिल्कुल हैरानी, ठीक है जी चला गया चला गया। अब लेकिन जब गवर्नमेंट आप पे लगा रही है तभी कोई कुंडी होगी,
0: अपने खर्चे भी करो।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल जी, और बस थोड़े दिन ही रह गए हैं, उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज चेंज चेंज कर रही है। आज ग्रांट्स मिल रही है, नॉन रिफंडेबल, टैक्स फ्री, इस देश में टैक्स फ्री क्या है सर, बस सांस लेने का टैक्स नहीं है, बाकी हर चीज पे तरह तरह के टैक्स है। तो ग्रांट्स होता है नॉन रिफंडेबल।
0: दो दिन हो गए साहब नहीं सही आ रहा जी। और नाल दी नाल नकपल सर, फंडिंग दा वर्ड सुन के ना कई बार साडे दिमाग च आउंदा कुछ ना कुछ हिडन होऊगा, इहदे विच इहदा हिडन कुछ हैगा या?
1: मेरी वाइफ भी यही कहती है कि भाई लोगों का इतना भला कर रहे हो, मतलब क्यों शोर मचा रहे हो, लोगों का फायदा हमारा फायदा कम है। मेरी वाइफ कहती है हमारा फायदा कम है, लोगों का फायदा ज्यादा है
0: जी,
1: क्योंकि भाई साफ काम है, साफ तरीके से कर रहे हैं
0: जी।
1: तो मतलब अगर पेपर एडिट करने होते मुर्दे से काम शुरू करता मैं, था बट मैं दिल नहीं मानता, मुझे मुझे पसंद नहीं वो काम, मेरे को लालच नहीं पैसे का, ना मेरी टीम को लालच है, ठीक है। अब इसमें सिंपल सा काम है, साफ सीधा काम है, आप हमें अपना एनओए देते हैं, मतलब बताते देते नहीं है, एनओए इनकम बताते हैं, लाइन 15,000, 70,000 से फैमिली इनकम कम है, अच्छी बात है कॉल करें, नहीं है अगर आपकी इनकम ज्यादा है $1,00,000 के, हमें कम से कम एक दिन में 50 फोन आते, सबको मना कर देते हैं, भाई सब एलिजिबल नहीं हो, कार्ड की सेटिंग हो नहीं सकती, नाम होती तो भी ना करते, सारा साफ काम है। वो फिर गुस्सा जाते हैं कि हमें नहीं मिल रही, भाई साहब हम क्या करें, हमारे आपका प्रोग्राम थोड़ी है, गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, आपकी 2024 की इनकम दीजिए, अपने बच्चे, आप मैरिड है तो बच्चे कितने हैं, उनकी एज कितनी है, ये क्राइटेरिया हम डालते हैं गवर्नमेंट के कैलकुलेटर पे, आपको बताते हैं आपकी जैसे 40,000 ग्रांट बनती है, 40,000 लोन बनता है, सिर्फ ग्रांट ले लीजिए क्योंकि लोन ऑप्शनल है, बट लोन लेते हैं क्योंकि वो लोन 0% पे और उसके बाद 2.5% पे है, पर भी जाता है अगर आपकी जॉब न लगे नहीं दे पा रहे तो बताओ कहाँ मिलेगा आप ऐसा कुछ, बट आप मिस करेंगे क्योंकि बहुत लोग ऑलरेडी ले चुके ने, बहुत लाइक इट्स वेरी अवेयर थिंग, पीपल नो अबाउट दिस, जो बंदे सेकंड कोर्स कर रहे राइट अवे था करके रिटर्न जाते फोन पे ही।
0: सर नंबर और एड्रेस?
1: बिल्कुल जी, नंबर नोट करें 437-234-3175, 437-264-3175, प्लीज बताना भूल गया मैं, फीस हमारी है 199 या 499 काम होने के बाद, शुरू में कुछ भी नहीं है सर, मत डरिए, हम भी आपसे ज्यादा ईमानदारी से काम कर रहे हैं क्योंकि फीस हम काम होने के बाद लेते हैं, आपकी नीयत डगमगा सकती है, हमारी नहीं डगमगाती, काम होने के बाद हमारी फीस है 200 या 500, कोई इसमें चलाकी है ही नहीं, लिख के लिखवा लीजिए मेरे से 437-234-3175।
0: राइट नाउ कॉल कर सकते हैं, किन्ने चिर च असेसमेंट हो जूगी?
1: 5 से 10 मिनट में वर्बल असेसमेंट, कागज पे चाहिए तो फिर कल तक आपको हम फोटो भेज देंगे,
0: सो
1: मतलब आपको बता देंगे फोन पे, कल आपको सिस्टम ऑफिस आए ना आप हमारे 218 एक्सपोर्ट बुलेवर्ड।
0: अच्छा तो टिम होटल तो नहीं मिलते?
1: बिल्कुल जी, आप बताएंगे, मेरे पास क्लाइंट आगे कहते हैं सर वो पहले टिम होटल में मिलता था, जिनका खुद का ठिकाना नहीं है ठगी मारने के लिए घूमेंगे ना मार्केट में, हमारा प्रॉपर ठिकाना है सर, अभी क्लास हमारे ऑफिस में इतने लोग आते हैं कहते हैं सर क्लास ऑन करना सिखा दो, अंकल आंटी बहुत है ना हमारे, नो एज लिमिट, इतने लाइक हमारे 70 ईयर्स के क्लाइंट है, 30 ईयर्स, और वो कुछ अंकल कहते हैं मुझे तो फोन यूज करना नहीं आता था, आपने फोन यूज करना भी सिखा दिया हमें साथ में क्लास लगा लगा के।
0: सो बिल्कुल जी, कई बार सानू भी ऐसिया कॉल आ कि तुसी मसी पहला कितो लए सीगे, ये फ्रॉड आ, ये वापस करने पेंदे आ, जे तुसी भाई फ्रॉड्स लोकां तों ये चीज करवाओगे तो ऑफकोर्स ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀ ਗਲੋਬਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਆਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ 218 ਐਕਸਪਰਟ ਬੁਲਵਰਡ 212 ਨੰਬਰ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ $30,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $1,00,000 ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾਗਪੁਰ ਸਰ?
1: ਅੰਟਿਲ ਸੈਟਰਡੇ।

0: बस
1: चार दिन रह गए
0: दैट्स ऑल।
1: हमारे बैगेज पूरे ठा करके फुल है हमारे के पास, ऑल गुड है। अब रेफरेंस इतना जाता है हमारे पास, आज आपका काम हो तो आप अपने पड़ोसी को लेके आएंगे, माता पिता को लेके आएंगे, क्योंकि एवरीबॉडी इज एलिजिबल, पीआर सिटीजन प्रोटेक्टेड पर्सन, नो एज लिमिट, नो क्रेडिट चेक। नंबर 437-234-3175 437-234-3175 हमें कॉल करे तो एस्टिमेट लो जी 437-264-3175। पीछे ना रहो, ऑलरेडी सारे लोग ही ले चुके हैं, पड़ोसी आस पड़ोसी फ्रेंड गवांडी सब ले चुके हैं। 437-234-3175
0: 437-264-3175 बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।

0: मिलना इवेंट्स लेके आ रहे ने तुहाटे वास्ते रू का सफर टूर। जी हाँ, लाइव मास्टर सलीम कॉन्सर्ट इन टोरंटो 24 जुलाई नो मिसेस आगा कन्वेंशन सेंटर दे विच। एक ऐसी ही शाम जो छू लेगी तुहाडी रूह नो।
1: मैं के अचन जी सलाम कहने
0: दिला नु टुंबन वाले मास्टर सलीम दे सूफियाना तराने अते हाई एनर्जी पंगड़ा बीट्स गूंजन गे 24 जुलाई नो। तारीख नोट कर लो 24 जुलाई। अपनी टिकटा अज ही बुक करो। लॉग ऑन करो www.milnatickets.com ते। स्पॉन्सरशिप अते होर किसी भी जानकारी लई तुसी रोहन शर्मा नु कॉल कर सकते हो 6477839873। बस रेडी हो जाओ नचण गाउण ते चूमण दे लई सुरां दे बादशाह मास्टर सलीम दे नाल।

0: वाह वाह वाह वाह।
1: सौण दा महीना रुत प्यार दी,
0: क्या बात है।
1: याद मल्लो मल्ली आ गई सोने यार दी ते कुड़ियां च गल छिड़ गई रे। जदों पींगदे हुलारे नाल सोने सजना हानिया वे पत्तियां दा,
0: वाह
1: ते पत्तियां ना,
0: क्या बात है।
1: पत्तियां ना इक पिड़ गई रे,
0: क्या बात।
1: सौण दा महीना रुत प्यार दी,
0: वाह वाह वाह वाह वाह, बहुत वधिया यार। बॉबी तू ना किस दिन आ प्रोग्राम बना के ना मेरे नाल, आपां नेक्स्ट वीक दे विच कोई बनाउणे ते किस दिन आ तेरे तों इक अद्धा नहीं गाना दो चार सुणांगे आपां, ते तेरी आवाज़ नूं पूरे कैनेडा दे नाल जीटीए दे विच लोकां नूं सुनावांगे। वैसे तां तेरा नाम हैगा ही हैगा, लेकिन आपां वी कोशिश करांगे अपने रेडियो प्रोग्राम दे रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू। हां जी खलील जी।
2: जी तो आपके प्रश्न का उत्तर ये है कि देखिए हर प्रोग्राम, हर आरजे जो डीजे है वो अपने हिसाब से प्रेजेंट करता। आपके प्रोग्राम की सबसे बेहतरीन चीज ये है सारे प्रोग्राम के आप बिगनिंग में बता देते कि देखो भाई दिन भर तो सियासी बातें सब चीजें चलते
0: चलती
2: है, हल्ला मार धाड़ ये हुआ वो हुआ, अब शाम के टाइम पे जब फारी
0: सुकून,
2: सुकून चाहतों में सुकून की कोई गल करो, कोई चंगे गाने सुनो जरा आराम, वरना सोते वक्त
0: आपको अच्छी नींद आए,
2: अच्छी नींद आए और जरा फ्रेशनेस भी होना
0: ना भी।
2: दुनिया में बड़े से बड़ा पहलवान रहने दो, ये मेरी रीडिंग है
0: जी,
2: ये रिंग के बाद जब फाइट खत्म हो जाती तो थक के चूर चूर हो जाता है।
0: जी जी जी जी,
2: ये बातें।
0: ते कोई अपना रंग का कोई शेर भी एक दो जरूर शेयर करो हमसे।
2: शेर बेहतरीन ये है कि देखिए किसी से मुलाकात हो, बड़ा हसीन है वो, खूबसूरत है, जाहिर है मुलाकात, जैसा आप बोलते हैं 7 महीने से मैं सुन रहा हूँ तो जाहिर है कोई चीज पसंद आती ना, पंजाबियों को पसंद करता हूँ ऐसी नहीं करता हूँ ना,
0: जी, जी, जी,
2: वो
0: जी,
2: भी पसंद करते,
0: बिल्कुल सही।
2: तो हर प्रोग्राम में योगदान देना, हर टॉपिक पे बोलना, वो भी एक बड़ी बात है। तो मैं ये कहूंगा कि कितने हसीन है वो लोग जो मिल के एक बार,
0: क्या बात है,
2: कितने हसीन है वो लोग जो मिल के एक बार, आंखों में जज्ब हो गए दिल में समा गए।
0: क्या बात क्या बात। आज तूने जो शेर सुनाया ना अखिलेश जी, वो भी हम बात भी कर रहे हैं सावन का महीना, सावन के महीने को ना मिलाप का महीना मानते हैं।
2: जी जी बिल्कुल।
0: के तो आपने जो शेर भी सुनाया ना, ये भी इस प्रसंग में बिल्कुल सूट करता है।
2: शुक्रिया।
0: सो तुसी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप टाइम निकाल के लंदन से यहाँ पे आए, अभी आपने प्रोग्राम अटेंड किया और आपने लंदन भी वापस जाना।
2: जी जी जी।
0: तो
2: हसनैन साहब से भी मुलाकात होगी।
0: हाँ हसनैन साहब
2: के मुझे आवाज से पहचाने, मैं रिसेप्शन पे पूछा खाली तो एकदम आप आ गए हसनैन भाई।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
2: आप खाली जी हैं। मैं बोला जी
0: नहीं, आपका फोन आता ना, ये मेरे साथ होते हैं तो इनको पता है कि आप रेगुलर फोन करते हो, मैं बता देता हूँ खलील जी का फोन आया है, तो आप फिर बोलते भी जो थोड़ा उर्दू मिक्स है आपकी जुबान में, तो ये फिर बड़ा आनंद मानते हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया जी। दोस्तों साडे प्रोग्राम का हुण समाप्ति का समा हो रहा है, ते हसनैन जी की हाजरी कल भी नहीं लगेगी, अज आ तो गए पर हुण साडे कोल टाइम नहीं है, ते कल इन्हों की बुकिंग हुई हुई है उत्थे मलाई रेस्टोरेंट दे विच, ते परसों इन्हों की बुकिंग साडे विश्व पंजाबी भवन दे विच है। तुसी आओ, इन्हों की गायकी का आनंद मानो, लाइव देखो इन्हों, उच्चा फुटा उच्चा लंबा गभरू 6.5 फुट का तुहानू तुरला फा के उत्थे मिलना, ते तुसी इंजॉय करोगे इन्हां नूं मिलके, इंसान भी बहुत अच्छे ने। सो कल मिलांगे किसी नवे विषय के नाल, तद तक दे लई खुश रहो, आबाद रहो और जिंदाबाद।

0: locations in GTA. For more information, visit rajdhanisweets.ca.
1: डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी कस्टडी किस नु मिलेगी ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहनगे
2: SNS लॉयर्स को इन सारे सवालों दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है अपने हक जानन लई या सलाह लैण लई आज ही SNS लॉयर्स नु कॉल करो 416-655-2000
3: Get ready! GTA! Are you-

0: का टिप्पणी होवेगी, चलंत मुद्दियां ते मसलियां ते
1: तिरछी नजर रवेगी कनेडा ते दुनिया दी सियासत ते
0: छह पर लगेगी नवे पुराने गीता दी
1: बाता होनगियां सभ्याचार ते अमीर विरसे दियां
0: सुनना जरूर लाइव शो विद शमी पठल 5:30 AM ते सोमवार तो शुक्रवार
1: बिजनेस दी प्रमोशन ले आज ही कॉल करो 416-917-7063 ते 416-917-7763

0: समोसा एंड स्वीट फैक्टरी जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले 100% कैनेडियन मेड, टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुन तीन लोकेशंस तो सर्व कर देने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165।
1: ओहो, सर्दी च हीट नहीं चलती ते गर्मी च एसी।
2: ले आपा हुणे करदे आ संधू साहब नाल गल ते करदे आ मसले दा हल।
1: एसी, फर्नेस, गैस लाइन, वाटर हीटर या ह्यूमिडिफायर सर्विस या इंस्टॉलेशन, नव एयर कंफर्ट ते जतिंदर संधू नु कॉल लाओ ते लाइफ च कंफर्ट पाओ। कॉल 647-706-6640।
3: 647-706-6640।
4: रोकी, तू अपनी इंश्योरेंस किसतों करवांदा यार?
5: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
4: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
5: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
6: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
5: जेड़े लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुण
7: तुहानूं है लगातार कम ते वधिया पेमेंट दी भाल, तां डकार लॉजिस्टिक दे रहा है ज्यादा कम दे मौके ते वधिया पे पैकेज, खूबसूरत माहौल विच कंपीटीटिव सैलरी ते इंश्योरेंस भी नाल, स्टेबिलिटी अते वधिया माहौल विच कम करन दा मौका। वधेरे जानकारी लई डकार लॉजिस्टिक नू कॉल करो 437-242-3158।
8: दुनिया विच किते भी घूमन फिरन लई या सस्ते टूर पैकेजेस लई याद रखो कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल 905-678-1200। कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल दो लोकेशन तो अपनिया सेवावां प्रदान करदे ने। 2883 डेरी रोड ईस्ट मिसिसागा, सेकंड लोकेशन 4550 एबनेजर रोड ब्रैम्पटन।
9: स्टारगेट लॉजिस्टिक्स नॉर्थ अमेरिका दी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी, हायर कर रहे ने AZ ड्राइवर्स। जेकर तुहानू भी है कम दी पाल, ता आज ही संपर्क करो स्टारगेट लॉजिस्टिक दे नाल। वर्क लोकली या क्रॉस बॉर्डर, सर्व कर दे ने GTA, मिडवेस्ट, मॉन्ट्रियल ते नॉर्थ अमेरिका दे विच। स्टारगेट लॉजिस्टिक, आज ही कॉल करो 905-564-9992, 905-564-9292।
10: ओ जी, हुण तुसी भी देर ना लगाओ, ग्रीन वैली सुपरमार्केट आओ। सुपर डील्स दे नाल ग्रोसरी ते डॉलर बचाओ। वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट, मीट, चिल्ड बियर, डाइन इन ते टेक आउट भी कर सकते हो। देर रात तक हफ्ते दे सत्तो दिन खुलता है। तंदूरी बाइट चाट एक्सप्रेस विच बैठ के वधिया स्वादले फूड दा मजा उठाओ। वधेरे जानकारी ते ऑर्डर लई कॉल कमाओ 905-913-1666, 905-913-1666।
11: CCA ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ।
12: ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਲਾਂ, ਪਾਵਰ ਸੇਲ ਨੋਟਿਸ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੀਤਿਆਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
13: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
12: ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਮ ਆਸਾਨ।
14: हर तरह दे टेस्टी इंडियन फूड अते स्वीट्स लई याद रखो द्वापा स्वीट एंड रेस्टोरेंट।
15: चार लोकेशंस तो तानु सर्व कर देने 100% प्योर वेजिटेरियन ते फ्रेश फूड एंड स्वीट्स लई द्वापा स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट। करो डाइन इन, टेक आउट, टिफिन सर्विस दे नाल नाल केटरिंग अक्रॉस GTA। बल्क ऑर्डरली साडी फैक्ट्री विजिट करो।
16: टॉप ऑटो कोलिजन प्रोवाइड कर देने फास्ट कोलिजन रिपेयर एंड ऑटो पेंटिंग जॉब्स। Complete collision repair from towing your car to applying the finishing touches. You can count on us. We are providing end-to-end assistance. 24 ghante towing service available hai. Har tarah de insurance claims nal deal kar dene. Complete collision repair and car painting. Top Auto Collision.
17: Ek vari fir program de vich GNU jehdi air quality thodi worse ho jawegi later on, to raati thodi better hoyi sigi. Agg haje bujhn ch aani.

सतगुरु होए दयाल त सरदा पूरी है, सतगुरु होए दयाल न कबहू झूरी है, सतगुरु होए दयाल त दुख ना जानिए, सतगुरु होए दयाल त हर रंग माणिए। अकाल पुरख के दिते हुए सारे रंगा माणते हुए जुड़ चुके हैं जी एक बार फिर एक खूबसूरत सवेर चढ़ती कला वाली सवेर के खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम पंजाबी लहरा लैके। मैं थोड़ा मेज़बान प्रभ संधु तो मेरे नाल पंजाब की धरती तो रमेश हुशियारपुर जी जुड़नगे। स्टूडियो घड़ी के मुताबिक 7:03 हो चुके हैं, थोड़ा साढ़ा साथ हूँ तो लैके 8 बजे तक बने रहना।

बैगलियन दा रोड़ा कुड़ा मेरे साहब दी वड़ीया तणके जिन्नी कदर ना मेरी मैंने तख्त बिठाया साईया जिविखा मैं अमला वल ते कुछ नहीं मेरे पल्ले जिविखा तेरी रहमत वल ता बल्ले बल्ले बल्ले ता बल्ले बल्ले बल्ले उस दे रहमता बख्शन सत्कार को फिर तो ब्रूहा ते दस्तक दे रहे अमनदीप सिंह बैनीपाल वालों आप सबनों शुभ सवेर गुड मॉर्निंग सत श्री

0: रात हमें छड़ दिनी आ, पर जनाब चले किथे हो?
1: मैं चले स्काईडम ऑटो एंड बॉडी सेंटर, जेडे कर देने मेरी कार दी केयर, बेस्ट सर्विस ते फुल रिपेयर।
0: ए होई हन स्काईडम ग्रुप ऑफ कंपनीज, जेना दिया जीटीए दे विच चार लोकेशन ने, मेरी फ्रेंड अनु दी एक्सीडेंटल कार भी फिक्स करके नवी बनाती सी।
1: जी हां, कारा दे नाल नाल बसा अते वड्डे ट्रकां दी हर तरह दी रिपेयर अते बॉडी वर्क दा काम भी कीता जांदा है। रेट वास्ते बेस्ट पैकेज प्रोवाइड कीते जांदे ने। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 905 874

0: Visa Medical Insurance. Number hai ga ji 416-817-6500. This is Harpreet Saini, Charter Life Underwriter and Certified Health Insurance Specialist from Top Choice Insurance Agency.
1: एच के मूवर्स का हो साथ, लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए टेंशन लेने की नहीं है बात। एच के मूवर्स होम ऑफिस अपार्टमेंट्स एंड डिलीवरी बिग और स्मॉल वी मूव इट ऑल वी ऑल्सो शिप कार्स वी ऑल्सो डू स्टोरेज 30 इयर्स एक्सपीरियंस वी सर्व विद अ स्माइल एच के मूवर्स गिव अस अ कॉल मिस्टर हरमिंदर 416-524-6704 416-524-6704
2: हासल फ्री मूविंग के लिए एच के मूवर
3: आप पंजाबी आए
4: IPL चल रहा है only on Karo Stream. Watch successful IPL season only on Karo Stream. www.karostream.com or call 905-204-1313.
5: A to Z किचन कैबिनेट भाई वाह क्या किचन कैबिनेट तैयार करते हैं लक्की भाजी दी बनिया किचन कैबिनेट देख के गुआंढी भी बहाने नाल तुहाडे घर आउंदे हन शीशे नाल भरिया किचन कैबिनेट वास्ते डिजाइनर किचन कैबिनेट वास्ते A to Z किचन कैबिनेट 416-720-7073 905-720-7073 दे कॉल कर सकदे हो
6: नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज
7: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा कॉल 905-460-8888 दैट्स 905-460-8888
6: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ
8: तुसी अपने फोन प्लान ते बहुत पैसे दे रहे हो सेलुलर पॉइंट ते असी तुहाडे लई लेके आया बहुत ही वड्डी सेविंग्स बेस्ट फोन प्लान्स ते बिना किसी शर्त तो चाहे तुसी बिजनेस या फैमिली प्लान्स च सेविंग चाहने हो नो कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन या लेटेस्ट फोन चाहिदा सब तो बेस्ट कवरेज नाल सेलुलर पॉइंट ते तुहानू सब कुछ मिलेगा विजिट करो सेलुलर पॉइंट सेव टुडे इट्स दैट इजी अपनी नियरेस्ट लोकेशन cellularpoint.ca ते देखो Cellular Point, more phones, more plans, more choice.
9: यार इना इंश्योरेंसा ने ते तुहां कढ़ाता वधिया ते जायज रेट कित्थों मिलेगा
10: टॉप फाइनेंशियल इंक तो जो अपनियां बेहतर ते भरोसेमंद सेवावां लई जाने जांदे ने
11: क्रिटिकल मॉर्गेज आरईएसपी आरआरएसपी विजिटर इंश्योरेंस सुपर वीजा स्पेशल डिसेबिलिटी प्लान फॉर ट्रकर्स जे तुहाडे कोल वी नालों ज्यादा ड्राइवर ने ता तुहानू अनबीटेबल प्राइस लेके देंगे
10: कॉल करो 20 सालां दे तजुर्बे वाले सुरजीत सिंह पड्डा जी नू 647-300-3100
11: या मिलो 70 डेल्टा पार्क बुलेवार्ड यूनिट 11 ब्रैम्पटन

0: के लिए एक बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी आई है वान के अंदर, जिहड़ी के 2 acre लैंड उत्ते एक कस्टम मेड
1: करेगा। नहीं हल तक,
0: हाँ जी
1: तरीक दसी नहीं हल तक,
0: तरीक हाँ नहीं तरीक तो थोड़ी हले रहती है।
1: ओहो चलो कोई नहीं, टाइम है
0: बात करते हैं फिर।
1: हाँ कोई गल जी।
0: अच्छा, सर ए हरजीत जी अपना 2 acre की लैंड हैगी और ये उत्ते स्टेट ऑफ द आर्ट एक हाउस बनेगा जेदे चो 9 bedroom ने, 8 washroom ने, 3 kitchen बने हुए ने और 30 to 35 कारां तुहाड़े अपने ड्राइववे उत्ते पार्क हो सकदियां ने।
1: अच्छा,
0: और ए 2 acre की लैंड जिहड़ी है फुली फेंसड हैगी, मेटल की फेंस लगी हैगी, 2 auto gate लगे ने। और जिस तरह हरजीत जी तुहानूं पता है कि साडी जिहड़े पंजाबी फैमिलियां ने उन्हां दियां एक फैमिली दे विच मतलब बड़े फैमिली साइज होंदा है और ये स्पेशल घर जिहड़ा है इसे हिसाब नाल डिजाइन किया गया है कि अगर एक परिवार दे विच अगर कोई 5, 10, 15, 20 फैमिली मैंबर हैगे ने तो आराम नाल इस घर च रह सकते हैं।
1: ठीक है।
0: जिस तरह बाज दफा होंदा है कि एक फैमिली च 2 भाई हैगे ने, दोनों भाइयों की शादी हुई है क्योंकि अंदर वो बिल्कुल कह लो कि 9 bedroom ने और 8 washroom ने, जिनी बड़ी फैमिली हो इस घर के अंदर रह सकती हैगी। और ये सारी प्रॉपर्टी जी है फुली अपग्रेडेड हैगी और ये अंदर जी लैंडस्केपिंग हरजीत जी की गई वो बहुत ही स्पैशल है। जो तुम घर के सामने खड़े होंगे हो बिल्कुल एक साइड के कारनर से इन साइड का जरा मतलब गाड़ी ड्राइव करने का वो गेट है आटो गेट और दूसरी साइड से प्रॉपर्टी के दूसरे कारनर से एग्जिट का गेट है और तुम्हें ये चो एन और एग्जिट करने की कोई डिफिकल्टी नहीं हैगी क्योंकि दोनों गेट सैपरेट ने और एक गेट और दूसरे गेट के दरमियान कोई 150 foot का डिस्टेंस है। और यह जी प्रॉपर्टी हैगी ये अंदर कोई मिच्योर 70 tree लगाए गए हैं और हर ट्री अंदर फिर लाइट दी गई है।
1: ठीक है।
0: अगर कोई
1: दोस्त दिखा दोगे इस वीकेंड के,
0: मैं बिल्कुल हजी जिस कर जो बेस्ट तरीका है कि जेडे दोस्त इंटरस्टेड ने जेडे दोस्त इस बड़ी प्रॉपर्टी वधिया प्रॉपर्टी लेना चाहते ने वो मैं अपने नंबर तो कॉल या मैसेज करें।
1: हाँ जी, हाँ
0: उन्होंने सब से पहले मैं भेजागा पिक्चर।
1: ठीक
0: है। वो देखे प्रॉपर्टी अंदर देखने कैसी है, बाहर देखने कैसी है, लोकेशन अपनी देख लेने को लोकेशन एग्जैक्टली की हैगी। उस तो बाद जेड़ा भी दोस्त इंटरस्टेड है इस सैटरडे या संडे नू एनी टाइम वो मेरे नाल टाइम बना के प्रॉपर्टी देख सकते
1: हैं। मतलब चाहते नहीं कि किसी का टाइम खराब करिए, पिक्चर दिखा दो।
0: सम टाइम यह होता ना कि उन्होंने जरूरत मुताबिक घर नहीं आता या जो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे उस तो ज्यादा खूबसूरत घर है तो बेटर है कि पहले थोड़ी प्रॉपर्टी की इनफॉरमेशन ले लैन।
1: ठीक है।
0: पिक्चर देख लैन, लोकेशन देख लैन,
1: वधिया कीता।
0: और उस तो बाद अगर उन्होंने प्रॉपर्टी पसंद आती है, अगर वो प्रॉपर्टी उन्होंने बजट हैगी तो असं उन्होंने शोविंग सैटरडे या संडे की बुक करा लवेंगे, वो आके प्रॉपर्टी देख लैन। और मैं श्योरिटी नाल कह सकता कि यह प्रॉपर्टी वाकई एक स्पेशल प्रॉपर्टी है और जेड़ा दोस्त इस प्रॉपर्टी ने एक दफा चाहे पिक्चर ही देख लेगा और चाहे फिजिकली देख लेगा उन्हें प्रॉपर्टी जरूर पसंद है।
1: वेरी गुड, बहुत अच्छी गल।
0: और इस प्रॉपर्टी के बारे कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है, कोई भी जानकारी लेनी है तो मैं कॉल कर सकते हैं और मेरा नंबर है 416-400-3315, 416-400-3315। और दूसरा हरजीत जी बहुत सारे दोस्त जड़े ने वो फार्म हाउस देख रहे होंगे ने, मेरे के लिए बहुत स्पेशल फार्म हाउस लिस्टिंग है जगह।
1: एक किन्नी जगह किन्नी है
0: ए भाई? हैगा 98 acre का फार्म हैगा,
1: 100 acre जमीन मिल गई
0: और खूबसूरत किस्म का नीट एंड क्लीन 3 bedroom का घर हैगा।
1: हाँ,
0: अंदर बार नेगे ने, यानी तुसी कहो कि अगर कोई सुबह बंद होते मूव होके अपनी फार्मिंग शुरू करना चाहता है, कहो बफलो रखना चाहता है, कोई गोट रखना चाहता है,
1: बिल्डर लोड पै गई लाटरी निकल आनी है।
0: अच्छा, फिर ए भाई जी ए जरा प्रॉपर्टी हैगी ए दोनों कारनर ते मेन रोड हैगे ने।
1: अच्छा।
0: और ए आल सराउंडिंग दे विचो यानी एक होर लाड़ छड़ के सारा पानी हैगा और पानी दे कारनर दे उते लोगों दे घर हैगे ने, उते सारे समर कैंप हैगे ने। और ए प्रॉपर्टी मतलब जस्ट कोई रूटीन दी रोड दी प्रॉपर्टी नहीं हैगी बल्कि ए समर कैंप दे सराउंडिंग दी प्रॉपर्टी हैगी। और कोई भी दोस्त इस फार्म हाउस दे बारे इनफॉरमेशन लेना चाहता तो भी मैं कॉल कर सकता है, मेरा नंबर है 416-400-3315, 416-400-3315। और हरजीत जी जी इस वक्त प्राइस डाउन हैगी दोस्त फायदा उठा सकते हैं, बेस्ट प्राइस से प्रॉपर्टियां मिल सकती
1: है। प्रॉपर्टी वाली वधिया, तुम प्रॉपर्टियां दोनों ही वधिया लेके आए, 98 acre जगह नाले बंदा अख घुमावे कितने तक अख जाती उत्थे तक पता लगो भाई अपनी प्रॉपर्टी है जिते तक अख जाती है।
0: और दूसरा भाई जो इस फार्म हाउस के सामने तुसी खड़े होंदे हो तो बिल्कुल इहदी जिहड़ी फ्रंट एंट्रेंस हैगी उहदे अंदर ट्री लगे ने, ग्रास कटिंग हुई हुई है। वाकई तुहानूं फील होंदा कि यार तुसी किसी फार्म हाउस विच एंटर
1: हो। उत्थे जे आपां क्रिकेट खेडण जाणा होवे जा सकदे हां 11-12
0: बंदे? बिल्कुल बिल्कुल जा, उत्थे 11-12 क्यों, उत्थे 11-1200 बंदा जा सकदा है। उत्थे मतलब देखो ना कि 100 acre की लैंड है और फिर घर के सामने जी मैं तुम कह रहा कि जगह की लैंडस्केपिंग हुई है।
1: हाँ।
0: उत्थे भी 2-4-500 बंदे की पार्टी की जा
1: सकती है। नहीं सानू घर दसिया ना जो इधर
0: वान
1: तो सिटी बड़ी
0: जेड़ा सर वान का घर हैगा यकीन जानो कि मैं अगर जो मैं कोई दोस्त कॉल करेगा मैं पिक्चर शेयर करांगा उत्थे मैं तुम पिक्चर ही दिखावगा कि लोग किस तरह 2-2, 3-3 100 लोगों की पार्टी भी उत्थी हुई है।
1: अच्छा, उहदे च हाईवे नेड़े है घर दे?
0: सर हाईवे जी 400 हैगी, उतो 5 मिनट की ड्राइव हैगी,
1: बस सिर्फ
0: 5 मिनट ड्राइव है। और घर के सामने मेन जो रोड है वो है किंग वान रोड,

0: Dirty.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: Imagine having a Muskoka getaway that works for you, even when you're not there. Discover a rare opportunity at an exclusive open house in Huntsville, where peaceful surroundings, year-round enjoyment, and endless outdoor adventures meet proven investment potential. This exceptional property offers 3 bedrooms, modern finishes, and lake access nearby. Curious to learn more? Visit the open house Saturday, July 25th from 1 till 3, or contact Jay Gundam, RE/MAX Gold Realty, Inc. at 416-265-2222.
2: Kamal ka catch tha yaar, yakin hi nahi aa raha.
3: Tumhe is par yakin nahi aa raha? तो ये सुनो, सेव ऑन एनर्जी वाले मुफ्त इलेक्ट्रिक हीट पंप दे रहे हैं अगर तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिक या ऑयल हीटिंग है।
2: इस बात पर मुझे पूरा यकीन है, वो तो इंस्टॉलेशन का 100% खर्चा भी खुद उठाते हैं। अगर तुम्हारे घर में ऑयल हीटिंग है तो वो ऑयल टैंक भी बिल्कुल मुफ्त बाहर निकाल कर देंगे, और हीट पंप से तुम्हारे हीटिंग बिल्स 50% तक कम हो सकते हैं।
3: तुम्हें ये सब कैसे पता?
2: क्योंकि मैंने भी पिछले साल ये लगवाया है।
3: अच्छा, वो क्या वेबसाइट थी?
2: सेव ऑन एनर्जी .ca/EAP।

0: अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
1: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
0: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
2: ओ पंजाबी बोले ना ते मैं इंग्लिश विच अड़दा सी, ओ मेरी लुक ते मरदी सी ते मैं ओदे लक ते मरदा सी। सत श्री अकाल जी, मैं हां थोड़ा अपना रोशन प्रिंस ते तुसी सुन रहे हो वतनों दूर रेडियो।

0: One-stop solution for all your mortgage needs. Bank declined. Mortgage for self-employed. Quick closing in 48 hours. Or commercial loan. Just don't worry. 647-512-7000. Mortgage broker Mukesh Chauhan from Mortgage Diligent. FSRA number 10252. Conditions apply.
1: Don't worry. Mukesh Chauhan hai.
2: नोबेल फ्रेश फूड शहर विच इको दौरा पै गया टॉप क्वालिटी ते लो लो प्राइसा विच नोबेल फ्रेश फूड फेर नंबर ले गया आटा दाल चावल नाले सब्जी ते दूध क्यों सब मिलेगा नोबेल फ्रेश फूड 2945 सैंडलवुड पार्कवे ईस्ट दूसरी लोकेशन 20 गिलिंगहम ड्राइव इन ब्रैम्पटन फोन 2898010566 नोबेल फ्रेश फूड
3: भाई साहब जिंदगी दा कोई भरोसा नहीं इस करके हाथ दे विच इंश्योरेंस पॉलिसी होनी बहुत जरूरी है
4: ता इस लई आज ही हरप्रीत सैनी नु मिलो इना कोल ने स्पेशल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स विद इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस तुहानू सिर्फ 10 साल या 20 साल लई पे करन दी लोड है ते इन्ने नाल ही तुसी पूरी लाइफ कवर्ड हो डिविडेंड्स दे नाल हर साल कैश वैल्यू ग्रो करदी है ते कवरेज इंक्रीज करदी है वधेरी जानकारी लई कॉल हरप्रीत सैनी 416-817-6500
5: कनाडा विच 75 प्लस लोकेशंस दे नाल पिज़्ज़ा डिपो लेके आया फुल ऑन टेस्ट दा कॉम्बो 50 प्लस टॉपिंग्स दे नाल बनाओ अपना फेवरेट पिज़्ज़ा ट्राई करो स्वीट चिली मैंगो पिज़्ज़ा या शाही पनीर पिज़्ज़ा
6: जूसी अते स्पाइसी विंग्स 25 फ्लेवर्स दे विच अते इंडियन स्टाइल चिकन विंग्स भी ट्राई करो
5: लोडेड फ्राइज नाल बटर चिकन फ्राइज शाही पनीर फ्राइज मतलब हर बाइट विच फुल पैसा वसूल अपने नजदीकी स्टोर ते जाओ या pizzadepo.ca ते ऑर्डर करो
6: ते जे तुसी बिजनेस करना है ते फ्रेंचाइजी एट pizzadepo.ca ते आज ही अप्लाई करो पिज़्ज़ा डिपो स्वाद ही शॉप टॉपिंग्स नॉनस्टॉप
7: So, Karan ji, liye ijazat ji.
8: Bilkul ji, bilkul. Aur ek wari jande fee information de di ki aaj Gage Park de vich jada ji City Brampton walo event hai Brampton Vibrant te 11th saal da eh jada ji annual festival hon ja raha hai. Bilkul free hai, koi parking di fees nahi hai. Everything is free. Tusi sirf utthe pahunchna apne parivar nu leke Mannat ji te naal di naal Mannat Noor ji de naal hor bhi bahut sare artists jada ji perform karange. Watno Dur di Gidde di team bhi jadi ji badi vadhiya peshkash kar rahi hai. So, gal ki tu sare ne aaj pahunchna hai 4 baje to leke 10 baje tak da eh ਇਵੈਂਟ ਆ ਗੇਜ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ
7: ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਕਐਂਡ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਜੀ ਤੇ 9057990999 ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੋਂਸਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਕਐਂਡ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ

0: बिल्कुल जी, अभी लाइक गवर्नमेंट की पॉलिसी फेवरेबल है, आप आज भी ज्वाइन करते हैं आपको ग्रांट आएगी, आसान से कोर्सेज करें, फुली ऑनलाइन, नो ओनली असाइनमेंट है, एग्जामिनेशन नहीं है। 30,000 से 100,000 का नुकसान ना कराएं, ना कराएं, ना कराएं, फंडिंग अपने अकाउंट में हासिल करें, जिसका मेजर पोर्शन आज की डेट में ग्रांट्स है। ये नहीं कि आप एक दो हफ्ते बाद आएंगे क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज कर रही है, मेरे घर की पॉलिसी नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है इसमें, पेंशन पे अवेलेबल है, और इसमें लाइक फुली ऑनलाइन है, घर के कम्फर्ट से। हमारे कितने क्लाइंट्स कोर्सेज कर रहे हैं, 8 साल हो गया शुरू नहीं करा, बहुत टाइम हो गया सर काम करते हुए, बाल सफेद हो गए हैं, कोई कुंडी नहीं है, कोई चलाकी नहीं है, कोई चलाकी नहीं है, भूल जाइए, फंडिंग का नाम सुन के हम डर जाते हैं। मत डरिए, मत डरिए, कॉल करें, असेसमेंट कराएं।
1: बिल्कुल, सो एक तरह जे तुहानू पेंशन मिलती है वह भी तुसी एलीजिबल हैगे हो, जे तुसी पीआर हो, जे तुसी सिटीजन हो तां भी तुसी एलीजिबल हैगे हो, जे 2024 दी 70,000 तो इनकम तुहाडी घट आ तां भी तुसी एलीजिबल हो। तुसी सौखे कोर्स करने चाहुंदे हो, ऑनलाइन कोर्स घरों बैठे बिठाने तुसी कर लैणे आ, तुसी 437-264-3175 इन्हां दा नंबर है, 437-264-3175 ते कॉल कर लियो। बहुत सारे लोग ने जिहड़े जिन्होंने ऑलरेडी एनरोलमेंट हो गई आ, जिन्हां दी हुण इह लास्ट बैच आ, उस तों बाद इह ग्रांट आ जिहड़ी उह खत्म हो जाणी है, ग्रांट नहीं मिलनी, कल्ला लोन रह जाणा। 437-264-3175 भाजी, जे 4 जणे दी फैमिली आ ते उहनां नूं किन्नी ग्रांट मिलनी है?
0: आराम नाल 80,000 दी फंडिंग ते 40,000 दी ग्रांट। बट हुणे एनरोल करोगे, देखो रश नहीं कर रहे आपको हम, बट गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो रही है इसलिए आपको अवेयर कर रहे हैं। फीस हमारी काम होने के बाद 199 या 499, कोई कुंडी नहीं है, काम होने के बाद आपने अपनी ईमानदारी से देनी है, हमने अपनी ईमानदारी का ख्याल रखा है, आप अपनी ईमानदारी का ख्याल रखें, बाद में पैसे देने 200-500 बस।
1: 437-264-3175 437-264-3175 ते हुणे कॉल कर लियो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।

0: रोकी तो अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार।
1: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
0: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
1: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
2: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
1: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
2: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू,
1: 416-509-1509
2: और विजिट insuranceforyou.ca।
3: दोस्तों, देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो नू या चलो AM 530 ते 24/7 जिन्ने भी प्रोग्राम आउंदे ने उन्हां नू सुनन वास्ते जां देश प्रदेश नू लाइव देखण वास्ते लॉग इन करो साडी वेबसाइट नू www.deshpradeshradio.com या www.deshpradeshtv.com। लाइव सुनना चाहुंदे लाइव ते क्लिक कर लो, जे वाच करना चाहुंदे आ तां ओह ते क्लिक करो, जां फिर अपने IPTV बॉक्स दे उत्ते पंजाबी सेक्शन क्लिक करो, ओहदे उत्ते जाके देश प्रदेश टीवी नू क्लिक करो, उत्ते तुसीं सुन भी सकदे हो, वेख भी सकदे हो 24/7। सानू माण है कनेडियन होण दा, ते कनेडियन होण दे नाते सोफा मार्ट ते कैसा लेदर जिहड़े के इक्को ओनर ने और कस्टम मेड सोफे तैयार करदे ने, कनेडियन मेड। अपने घर दे लिविंग रूम दी गिनती मिनती करके लैके जाओ ते हंसा सोफा तैयार करवाओ। 4 सीटां वाला, 5 सीटां वाला, तुहाडी अपनी मर्जी आ। 11x11, 10x10 ਦਾ ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ 120 ਡੈਲਟਾ ਪਾਰਕ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈਗਾ 24 ਰੀਗਨ ਰੋਡ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ। ਨੰਬਰ ਹੈ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਫੋਨ ਦਾ 905-792-8053, 905-792-8053। ਸੋਫਾ ਮਾਰਟ ਔਰ ਕੈਸਾ ਲੈਦਰ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ।
4: ਹੈਲੋ, AM 530 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ।
3: ਟੁਡੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 905-500-6444।
5: 905-564-6444। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ ਇਨਕਮ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ? ਆਪਣੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਓ। ਕਾਲ ਕਰੋ ਉਮਰਪ੍ਰੀਤ ਚਾਵਲਾ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੋਰਗੇਜ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ, ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ।

0: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार।
1: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
0: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
1: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे, इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी। जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
2: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू,
1: 416-509-1509
2: और विजिट insuranceforyou.ca।
3: अकाल डक क्लीनिंग वाले।
4: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca.

0: First year second mortgage or refinance करवाना चाहते हो तब तो सीधे अपनी गड्डी मोड़ो 1200 डेरी रोड ईस्ट यूनिट 22 मिसिसागा 416-804-2015 416-804-2015
1: कनाडा विच रहते हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग ले
2: इसे लिए मैं अपनी ते वाइफ की इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस दे सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है
3: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-457-3381 ते 416-457-3381 ते
1: नाले जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउणगे हुणे ही सिमराज सिंह सिद्धू नू कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381
4: Simply Indian brings you all simply delicious deals. Buy one, get one free every day. Sure 10 to sham 7 baje tak on dining and takeouts. Maza lavo Sunday no paratha plate. Monday manpasand kulcha plate. Tuesday chana bhatura. Wednesday lajawab veg thali. Thursday yummy haka thali. Friday maza lavo saag makki di roti da. A yummy deals is Simply Indian this sariya hi locations te. Dining, takeout and catering also available. Call at 905-794-8111. Simply delicious. Matlab

0: करो टॉप फाइनेंशियल दे सिमरा सिद्धू दे नाल 416-457-3381 416-457-3381 के
1: तानू माण है कनेडियन होण दा ते कनेडियन होण दे नाते सोफा मार्ट ते कैसा लेदर जड़े के इको ओनर ने और कस्टम मेड सोफे तैयार कर दे ने कनेडियन मेड अपने घर दे लिविंग रूम दी गिनती मिनती करके लेके जाओ ते हर साल सोफा तैयार करवाओ 4 सीटा वाला 5 सीटा वाला तुहाडी अपनी मर्जी आ 11x11 10x10 दा सोफा सेट तैयार करवा सकदे हो ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ 120 ਡੈਲਟਾ ਪਾਰਕ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈਗਾ 24 ਰੀਗਨ ਰੋਡ ਬ੍ਰੈਮਟਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਫੋਨ ਦਾ 905-792-8053 905-792-8053 ਸੋਫਾ ਮਾਰਟ ਔਰ ਕੈਸਾ ਲੈਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ

शर्मसार जिहा हो गया, हथ बन तेरे कोल खलो गया। मैं शर्मसार जिहा हो गया, हथ बन तेरे

0: Imagine having a Muskoka getaway that works for you, even when you're not there. Discover a rare opportunity at an exclusive open house in Huntsville, where peaceful surroundings, year-round enjoyment, and endless outdoor adventures meet proven investment potential. This exceptional property offers 3 bedrooms, modern finishes, and lake access nearby. Curious to learn more? Visit the open house Saturday, July 25th from 1 till 3, or contact Jay Gundam, RE/MAX Gold Realty, Inc. at 416-265-2222.
1: कमाल का कैच था यार, यकीन ही नहीं आ रहा।
2: तुम्हें इस पर यकीन नहीं आ रहा तो ये सुनो, सेव ऑन एनर्जी वाले मुफ्त इलेक्ट्रिक हीट पंप दे रहे हैं अगर तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिक या ऑयल हीटिंग है।
1: इस बात पर मुझे पूरा यकीन है, वो तो इंस्टॉलेशन का 100% खर्चा भी खुद उठाते हैं। अगर तुम्हारे घर में ऑयल हीटिंग है तो वो ऑयल टैंक भी बिल्कुल मुफ्त बाहर निकाल कर देंगे, और हीट पंप से तुम्हारे हीटिंग बिल्स 50% तक कम हो सकते हैं।
2: तुम्हें ये सब कैसे पता?
1: क्योंकि मैंने भी पिछले साल ये लगवाया है।
2: अच्छा, वो क्या वेबसाइट थी?
1: सेव ऑन एनर्जी .ca/EAP।